चुप पी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे नहा दरवाट पुर खर्च मंगा जब दे ता खाए दीवान को कलम एक हमा तुम मेल दरले लेखा पीठ छुटे नानका ज्यों ते।

0: का सवारी है, का सवारी है, सवारी है।
1: पौड़िया पे ही करना क्यों गलिया पे ही तारी है, देखा कितने अपना दरक चिपकी सारी है, जो ऐसो चल सी सब कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण है।

0: एक नहीं दाता पुस्ते जो पाइए नानक साकरमात सावे तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरे की तो कसम ना जाए नानक सेवकांडी है जैसे तिखसम।

पौड़ी नानक जपनी हरता के परवार, आप कराई साक्ति फिर आप कराई मार, एक नकली जंजीरिया की तुरी चढ़ आप कराई करे आप हों कसो करी पुकार, नानक करना जिन किया फिर ते सही करनी सा।

0: रंग प्रंग नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जिया सबके जान ला, सब किश तेरे बस तेरा कर भला।
1: तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान माता ते, जपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह सहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथय कमन कर्म नाम वर्णत सुमत अब रख दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख सफारी कर आ

दिया दिखाए, अपने सतगुर का सदबल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई, से धनवंत हर नाम लिवलाए, गुरपूरै हर धन परगासिया, हर कृपा ते वसै मन आए, रहाउ अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कै सहज सुपाए, पूरे गुर की सच्ची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो पाई, दुविधा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मान्या, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मान्या। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा, घर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, यह धन अखुट ना निखुटै ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिख।

तेरा मर्तबा रंग प्रंग ने कना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा घर पला तेरे कर आनंद बधाई तुत कर मान महता तेज अपना आप जल।

गए मशक्कत का नानक ते मुखी उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुखी उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दिवस रात दोए दाई दया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर।

तिरांतना पारावरेया। रागासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जी आंका दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवरना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जिन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी तुझ जे बड़ा वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुझे आपे भाव है सोई वरतै जी तू आपे करहे सो होई। तुदापे सृष्ट सब ओ पाई जी तुदापे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें त नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना हर गुण सद ही आख बखाना। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। हित सरवरडै पहिले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया।
प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिंतु नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिरन कीहे तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल सार संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहा। जप तप

शरण परे की राख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेंती चौपाई। हमरी करो हादर रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट स्वै तुम काव हो, आप हाद मुहे बचाव हो। सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर इच्छा निज करद करिय, सा बैरन को आज संगरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त हो जा जू करी हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सा पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जावद करख करा करतारा, प्रजा धर तब देह अपारा। जब या करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वादन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरालम। निरंका निर्विका निलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राचदीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सागरी सृष्ट दिखाय चंप, आद जुगाद स्वरूप सजंप। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबार असिख संगरो। दुष्जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्त तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।
जो कल को एक बार त्याय है ताके काल लिख न आय है। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि न हर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ती ताहि उबारा।

आई दुष्ट दोख तेल हो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंतरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक ना जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा।

अब हम चले ठाकुर पहार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, आम तन दियो है टार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखो लाज मुरार। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूर्त हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोढ़िया, रूप दिखावन बारो बारी। दल पंजन गुर सूरमा, बड़ जोदा बहु पर उपकारी। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। तिलंग महला नावा काफी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चेतना है तो चेत लै, निस दिन मह प्राणी। छिन छिन औध बेहात है, फूटै घट ज्यों पानी। रहाओ हर गुण काहे न गावही, मूर्ख अज्ञाना। झूठै लालच लाग कै, नह मरन पछाना। अज हूँ कछ बिगड़्यो नहीं, जो प्रभु गुण गावै। कहो नानक तेह भजन ते, निरभय पद पावै। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। सो कहो टल गुर सेवी है, एनस सहज दर्शन।

जो हर सेवा तिन बल जाओ, तिन हिरदय साच सच्चा मुख नाओ। साचो साच संभालो दुख जाए, साचा शब्द वसै मन आए। जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हिरदय साच सच्चा मुख नाओ। साचो साच संभालो दुख जाए, साचा शब्द वसै मन आए। गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन बसाए। रहाओ कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए। गुर कै भाणै चलै ता आप जाए। साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जानै बाणी। मनमुख अंधे दुख बिहाणी, सतगुर भेटे ता सुख पाए। हमै विचो ठाक रहाए, किसनो कहिए दाता एक सो, कृपा करे शब्द मिलावा हो। मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा। किसनो कहिए दाता एक सो, कृपा करे शब्द मिलावा हो। मिल प्रीतम साचे गुण गावा,

अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सोत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सहांदे

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग फिरे जल विस्माद पण विस्माद पणी विस्माद अग्नि खिडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद।

सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हां दर्शन रूपे अपार तीर्थना व्यर्चा पूजा करवास बेकार जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करता।

एक होंदा खिच ले थाओ इतना पे कई कार जल तल जिया पूरिया लोया कर आया कार ओए जी आखे सो तुहे जाने तिना पे तेरी सार नानक भगतां पुख सलाहन सच नाम आधार।

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जिते बरस बरस पड़ी है जिते मास पड़ी है जिती आर जा पड़ी है जिते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चकना चाट महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुतीर्थ भवया।

श्लोक महला पहला, कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार, कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसन हार, कुर सोयना कुर रूपा कुर पैनन हार।

व्यापत देखिया जगत, जान कौन तेरी गत, सर्ब की रक्षा करें आपे उत्पात, सर्ब की रक्षा करें आपे हर गत।

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठियां सो ही है सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठियां सो ही है

या सलोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ कृत वाहो, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहे। सतयुग

राम दासै होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद न सिमरौं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आय,

सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत

दानं बबेक दान विसाह दानं परोसा दानं दानं सिरदान नाम दानं सिर अमृत सार साहेब जी देन दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगौ जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची।

타는 사측한단 시링 하름 만드라 사헤브 지비케 딴난 딴네 사뜨그루 시리그루 그란타 사헤브 지요 마하라주 아버지 대 하주랑 샤바드 짱키 अनंत साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जिया जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जिया सरबत साध संगत नूं अपने दरां करां सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्श नाम शुभ पावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूरां कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कलाम तेरे पाने सरबत

जे मुहका कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वसनियाणी है पितरी चोर करे बढ़िया दलाल के मुस्फिये करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे कहले।

पहला पानी जियो है जित हरिया सबको, सुत क्यों कर रखी है सुत पवेर सोए, नानक सुत क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे।

0: पदे जमपुर जाए महला पहला।
1: सब सुत परम है दूजे लगे जा, जमन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए।

नानक फिके बोले तन मन फिका होए, फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए, फिका दरगह सटिए।